केविनष्टेयता तवा छोता सोवाने हके विनष्टेयता नएंगता सोवाने आ याय आ याय हा ए मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्या

करना क्या हो क्या कर सके तुम्हारा मखन श्याम के वाते यान है कमो ओ बिन मक वन लाव ये पे है हाय हाय हाय।

क्या नो या कसा के अय प्रमाना मख नन मोर्ष्याम तवाते यान हा कमो ओ वेन मख तवन लव ये पे हा या हा